सैव जी कहने लगे किदे जोगा आपको सतनाम श्री वाहे किदे जोगा है जो? कोई मां प्यो जोगा होता है, कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू किदे जोगा। जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर

करके रहना चाहिए था। जेड़ा उहदे भै विच रहिंदा है सुखी रहिंदा है, ते जेड़ा उहदे नाल दावे करे, जेड़ा उहदे नाल गिणतियां गिणे, ओह फिर सुखी नहीं रहिंदा। गुरु ने हम ध्यान पाया, जोगा सिंह घर पहुंच गया, और सिर्फ भी चिट्ठी लैके पिछे पिछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी सिख भी नाल, लड़की वालियां दे घर पहुंचे, मिलनी हो गई, सारियां रस्मां हो गई, हुण आनंद कारज का वेला होया। जोगा सिंह लावां लै रहे है, ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई, जोगा सिंह लै भाई, कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच, बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु दी चिट्ठी देखी, मथे ना लाई, चिट्ठी चुमी, चिट्ठी पढ़ी, ओ जोगा सिंह तेरी बड़ी लोड़ है, बैठे ते उठ पो, खड़ाए ते तुर पो। ते जोगा सिंह ने लावां विच छड़ दिती। घर वालिया ने कहा, जोगा सिंह तेनू रोकदे नहीं, चला जावी पर लावां ते पूरियां लै लै। कहन लगा, नहीं, मेरे कलगियां वाले पिता दा हुक्म है, जोगा सिंह तुर पै ते मैं हुण रुक नहीं सकदा। सात संगत, यह है जोगा सिंह दा प्यार। गुरु दी चिट्ठी पढ़ी, लावां विचे छड़ के जोगा सिंह तुर पिया, सफर करदा होया हुशियारपुर आ।

जल सिखाने गया सोते हुए नहीं, आराम कर रहे। हैरान हो गया जोगा सिंह, ऐ वेला कोई सौण दा नहीं, क्यों सुते हैं? सिखाने गया किसे मूर्ख सिख ने सतगुरां नूं सारी रात जगाई रखे। जोगा सिंह गुरु साहब के कमरे जा पहुंचे, मत्था टेकिया, सतगुरु उठ के बह गए, अखां लाल हन क्योंकि सारी रात जागते रहे, पर चेहरे ते उही प्यार है जिहड़ा सिखां वास्ते अपने प्यारियां वास्ते हमेशा होंदा है।

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्खा दुखदा आपसे नफरत छड़ के छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे घरां विच प्यार नहीं जिन्हें घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता घर बनता है प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे ना पानी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे को जी कह के बुलाया जाता है घर वो है।

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं साधु।

नट नारायण राग दे अधीन गुरु ग्रंथ साहिब विच एक होर राग रूप मिलता है, वो है नट। असल विच नट नारायण राग नट दी ही एक प्रकार है, पर दोनों राग भिन्न अते स्वतंत्र राग हैं। जिथे गुरुदेव ने नट नारायण की वरतों कीती है, उत्थे स्पष्ट तौर ते नट नारायण महला चौथा पांचवा आदि लिखिया है। नट नारायण का स्वभाव है काला, ये काल मिटदी है ना दे अमृत जल नाल। नाम नाल मन थिर हो जाएगा, नटखट नहीं रहेगा। नट नारायण दी थां नर नारायण ले लवेगा। खिन खिन नर नारायण गावे है, मुख बोले है नर नर हरे। मन दी स्थिरता ले नाम अमृत जल है, बाणी दे सार विच जिस नाल निस्तारा होना है। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। इस राग दे आरोह विच सत्ते सुर अते अवरोह विच धैवत अते गंधार वकल ढंग नाल लगदे हन। दोनों मध्यम लगदे हन। इस दे गोंग दा समय राग दा दूसरा पहर है। राग नट नारायण विच पहला शब्द मेरे मन सेब सफल हर काल ले गुरपा।

रेन रवाल गुरु रामदास जी पातशाह जी दी रचना इस शब्द का कीर्तन कर रहे हैं भाई परमजोत सिंह जी दूजा शब्द सरवण करो भाई हरिंदर सिंह हरचरण सिंह जी फक्कर गुरु अर्जन देव जी दी रचना है उलाहनू मैं काहू न दियो पहला शब्द मेरे मन सेव सफल हर काल।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन। पौड़ी विच कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए, लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उनां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन, द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन, अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन, सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ए सताउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही, ओ तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता है, किसे मित्र नू मिलना जाए ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के, मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन ते पैरी पै के सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

बहुत सुख है, पूर्ण सुख है। प्रभु सिमरन विच अधूरा सुख नहीं, छोटा मोटा सुख नहीं, अल्प सुख नहीं है, परम सुख है, पूर्ण सुख है। ते गुरु नानक दा दर संसार दे लोकां नूं दुखी देखना नहीं चाहता, देख ही नहीं सकता। गुरु नानक दे दर ते आपां पढ़दे हां, गुरु नानक देखदे ने संसार सुखी नहीं, ते दर्दमंद गुरु नानक लोकां नूं सुख वंडण तुर पैंदे ने। बाबा देखे ध्यान तर जल्दी सब रचमी दिस आई, उठ के तुर पैंदे। धन गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह अपने माल की दरगाह चरजोई करते, जगत जलंधा रख लए अपनी कृपा दार, जित द्वार है उपर है तित है लिओ बार, जिमें बचदा ही बचा ले। इन्हां तपदियां सर्दियां नूं जिमें शांति दे सकना मेरे साहिब उवें ही दे। जिस राह तो जिस दर तो कोई तेरे नाल जुड़दा है जोड़दा है, साहिब टुटे हुए मनुख नूं, बिखरे हुए मनुख नूं, बेचैन मनुख नूं निरंकार नाल जोड़ के सुखी कर देना चाहते, इन्ना भर देना चाहते ने सुख नाल के मनुख आप ही सुखी होवे ते आले दुआले नूं भी सुख बने। इथे भी कहिंदे ना, आप ही सुख पा, होरना नूं भी जपा ते उन्हां नूं भी सुखी कर। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, जप के सिमर के मुड़ मुड़ के सिमर के सुख लै लै, आनंद लै लै। सर्व कल्याण सुख निध नाम, नाम वो खजाना है जिस सारे सुख ने, ते जिन्होंने इस सुख नूं प्राप्त करने का यतन किया है उन्होंने जे कितने किनका मात्र भी इसका सच्ची मुची प्राप्त हो गया, थोड़ा जिहा भी उन्होंने रस आ गया। साहब कहते हैं मैं उनकी वडियाई नहीं दस सकता, संकल्प भी बख्शिया है, आप संकल्प करिया करिए, मन में एक इच्छा करिया करिए, आशा करिया करिए। सिमरों सिमर सिमर सुख पावो, जपदा हां जप जप के सुख पावांगा, कल कलेश तन माहे मिटावो। जीवन में शरीर में वरते हुए कलेश पाप सारे धोते जाणगे। सिमरों जात विसुंभर एक है, वो जिहड़ा विश्व दा मालिक वाहिगुरू अकाल पुरख है, उस नूं याद करा, उस नूं चेते करा, उस नूं जपा, जिस नूं अगे भी बड़े याद करदे। नाम जपत अगणत अनेक है, वेद पुराण सिमरत ये सारे जिसकी सिफत करदे ने, शुद्ध अखरां नाल जिहड़े उन्हूं याद करदे ने, शुभ बचना नाल शुभ भावना नाल जिहड़े उहदी उस्तत करदे ने, उस नूं याद करन वास्ते एक अखर दी लोड़ है। कैसी कमाल दी गल है, साहिब कहिंदे ने तेरे हिरदे च वस जाए ना, आप पढ़ते हैं, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, उहनूं याद करन वास्ते एक अखर दी लोड़ है। और वो अखर कैसा है, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, वाहिगुरु अकाल पुरख नूं चेते कराउण वाला कोई एक नाम। वैसे सतगुरु ने धन गुरु नानक ने संसार नूं उसकी महिमा बेअंत, उसकी लखी ना जाई जाण वाली लीला, उसकी महान वडियाई नूं आश्चर्यता दे रूप च मानदे आं, आनंद दे रूप च, विस्माद दे रूप च आनंद लैके मानदे होया, सानूं जपण वास्ते वाहिगुरु शब्द बख्शे। स्वाद लैके विस्माद लैके आनंद लैके उन्हूं याद करिए, कहण ना जाई अचरज विस्माद वाली अवस्था विच आ। जिस वेले उन्हूं इस तरह याद करांगे बड़ा चैन, भगत जना के मन विश्राम, भगतां नूं जपण वालियां नूं चैन आ जांदा, सुख आ जांदा। इसे करके महाराज ने इत्थे प्रेरणा की, आओ गुरमुखो आओ संत जनो आओ सजनो आओ भगती भाव की इच्छा रखण वाले हो, साजन संत करो ये काम, असल तां जिंदगी मिली इसे वास्ते, काम ही जिंदगी दा है, जिंदगी की प्राप्ति का प्रयोजन यही। आप अगे भी पढ़ने हैं, जिस वखर को लैण तू आया, जिस काम वास्ते तैनू भेजिया गया है, जिस मकसद वास्ते तैनू जीवन मिले है। राम नाम संतन घर पाया,
प्रभु प्यार वाले लोगों के बैठ के इन्हां नाल मिल के तैनू यह वस्तु प्राप्त हो जाए। संतां दे घर विचों, गुरु नानक दे घर विचों तैनू यह वस्तु प्राप्त होए। ता जब मान ले हो मन मोल हंकार छड के, क्योंकि हंकार दे मामले च महाराज ने बड़ा स्पष्ट वचन कीता है, होमै नावे नाल विरोध है तो इन्हां वसै इक थां। हंकार ते नाम एक हिरदे च कठे नहीं वस सकदे। नाम वसाउणा हिरदे च ते होमे कढ़नी पएगी, निम्रता धारण करनी पएगी। ते जिन्हां ने निम्रता नूं धारण कीता है, नाम अपने आप हिरदे च प्रवेश कर गए। साहब कहिंदे ने ताजा बमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल, फिर लाद खेप संतां संग चार। ए सौदा लद के, ए राम नाम दा सौदा लद के सतसंगियां दे नाल तुरदा रहो, उन्हां दे नाल रलिया रहो, मिलिया रहो उन्हां दे नाल। अवर त्याग बिखिया जंजार, माया दे जिहड़े बोझ शरीर दे उत्ते मन दे उत्ते पाए ने छड्ड दे। हिरदे विच नाम नूं थां देनी है ते फिर माया नूं थां ना दे। इहनूं वरतदा चला जा, इहनूं सिमरन ना लग जा, इहनूं याद ना करन लग जा, इहनूं हिरदे च ना बना के बैठ जा। अमर त्याग दिखिया जंजाल, फिर वे कैसा आनंद बनता है। धन धन कहे सब कोए, जय जयकार हो जाए। संसार विच भी होवेगी ते मुख उजल हर दरगाह सोए, दरगाह विच जाके भी मुख उजला होवेगा। ये गल वखरी है भागा वाले ने, जिन्हां नूं समझ आई है। ये व्यापार विरला व्यापार है, नानक तंग है सद बलिहार है। मैं उस तो बलिहार ने जाता, साहब कहंदे ने जिन्हूं ये व्यापार करना, और पहला भी किया है, जे तैनू यह व्यापार करना आ जावे कर लवे चंगा रहेगा। हलत पलत तो ले हो सवार, तेरी जिंदगी भी सौर जाए, तेरा भविखत भी सौर जाए, परलोक भी सौर जाए। राम नाम अंतर और धार, हिरदे दे अंदर धारण कर ले। राम नाम अंतर और धार, जे किवें जे तेरे हिरदे च नहीं वसदा, तेनू जाच नहीं आउंदी, तेनू समझ नहीं आउंदी, ता पूरे गुरु की पूरी दीखिया, पूरे गुरु को यह सोझी प्राप्त कर। पूरे गुरु को उपदेश ले, पूरे गुर का सुन उपदेश, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साच परीखिया। हर औखे सौखे समय विचों वो सच्चा बंदा सच नूं हिरदे च वसाउण वाला सुखी होके निकल जाता। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहुंचाए। सच व्यापार करो व्यापारी, ए व्यापार करने वास्ते तू आए। दरगाह निभे खेप तुम्हारी, ए सौदा तेरा दरगाह तक निभ जाने वाला। क्योंकि साहिबा ने जीवन दे ते परलोक दे रस्तियां बारे, उनकी औकड़ा बारे ते नाल निभ जाने वाली इस वस्तु बारे बड़ा स्पष्ट किया। साहब कहंदे ने जे पैंदे के गणे जाहे ना कोसा, जिस राह दे को नहीं गिने जा सकते। हर का नाम ऊहा संग दोषा, उथे नाम तेरे नाल निभ जाण वाला दोषा साबित हो। जे पैंदे महाअंध गुबारा, जिथे चानण दा होर कोई साधन नहीं। हर का नाम संग उजियारा, जिथे सूरजा दा चानण बेकार है, उथे नाम दा चानण आधार है। जहां पंथ तेरा को ना सिंझाणू, अपने भरा मित्र पुत्र जिस राह ते तेरे वाकफ नहीं बनणगे। हर का नाम तह नाल पछाणू, उथे तेरा साझीदार होके निभेगा, साथी होके निभेगा। जय महा भयान तप्त बहु काम, जिथे अग वरदी जापदी, कीते हुए कर्मां दे फल वजों, माड़े कर्मां दे फल वजों जिथे तपशां व्यापदियां ने, उथे जे नाम जपया होवे ते हर के नाम की तुम ऊपर छाम, ठंडका देवेगा तेनू, उन्हां तपशा तो बचावेगा। उहदे बारे साहिब कहंदे ने सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभाए खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन माहे, जे तू एक उस दा आसरा लग के चले, नानक बौर ना आवे जाहे, तेनू मुड़ के आना जाना नहीं पएगा। जिंदगी का मनोरथ पूरा हो जाएगा, वो मनोरथ जिंदगी का की है।

0: सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुरु उपदेश अते उदेश नू उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जियो वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असा सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी जाओ इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करन वाले भी अनेकां ने रसना नाल भी उपदेश करन वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिकर नाल बड़े उचेच नाल

अत कल्याणकारी अत सुखदाई अत खुश जायका अत मिठे उपदेश नाल दास दी रुचि है कि सारी संगत ही मुंह मिठा कर दे तां वी चंगा ही है, रल के वंड के छकना चंगा ही हुंदा है। नाले अत मिठा उपदेश रसना तो गावीए इन्ना क जरूर बोलो जिहदे नाल आप कथे आप सुनने हार होईए। अपना बोलिया आप सुने।

साहेब कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गहे जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन तेरे चरणा नाल जुड़िया हां फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे ना। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया मैं न गणेश है प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन स्यों लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं। मेर करो त्रिन ते मोह जाए गरीब निवाज ना दूसर तो सो 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं।

मौत तो डर नहीं लगता, रोना इस करके आ गया है कि दुनिया विच मैं पहला आया सी, तू मेरे बाद। मेरा हक बनदा है पहला मैं शहीद होवां,

तेरे तेने गुण ने तू इनी बाणी पढ़दा है शस्त्र विद्या भी सिखदा पिया गुरबाणी भी विद्या भी सिखदा पिया एक गल दस संगत दे झूठे कौले क्यों मांज रहे हैं क्यों मांज रहे ध्यान देना ये बड़ी गुण जड़ा ना ये हो ये माधो साधु जन दे

काली नाग, कई जगह कालिया नाग भी लिखा। कृष्ण जी ए चोज कर लग पे, ओरी सिरी नू मरोड़न, कदी पूछ नू मरोड़न।

कीर्तन सिखाण दी तुसी सेवा ले ली है। ये सच्चे पाशाह शुक्र है इन्ने खुले पाठ वंडन दी तुसी सेवा ले ली है। सेवक बने प्यारे ओ कमाई संभालनी सीखनी है ते तुहानू बख्शियां कोलों सीखी जाएगी। असी नानक भगती करनी है रावण भगती नहीं करनी। बाबा नंद सिंह जी ने एक करी स्नान करते पे एक सज्जन खड़ा सी कोल उदे मन च फुरना बनया मूह नहीं बोलिया कहंदा बाबा जी का रंग थोड़ा काला है। बाबा जी का रंग काल सावला सी फुरना ही बने फुरना बाबा जी का रंग ना गोरा नहीं है काल सावला जा काला जा। ते बाबा जी गडवी उत्ते पांदे पांदे ना कहंदे की सोचदे मेरा रंग काला है। ते बाबा जी कहंदे पता क्यों काला पाप कर करके काला हो गया। देखो सवा बारह का इशनान एक सवास बिरथा नहीं जाता पर मन कित्थे रखिया सेवक गुस्सा ना करे सानू कोई कह दे ना तू काला है या काली है तो मेरा ख्याल दस श्लोक ना सुना लीए तसली नहीं होंगी। महापुरुष का जवाब देखो महापुरुष का जवाब पाप कर करके काला हो गया मैं की करा। वो धारना बनाते सी ना वाहगुरु काली हो गई नाम तो बिना एक दास बेनती कर रहा है कि ये चीज तुहानू बख्शियां को मिलेगी बख्शियां अमृतसर विच बाबा ईश्वर सिंह जी नहर ते दीवान लांदे सी गुरु प्यारे ओ पंजाह पंजाह हजार का कट हुंदा सी ध्यान देना हुण पंजाह हजार बंदा सामने बह के सुनदा होवे वैसे नहीं पैर लगदे बंदे दे है जी उदो बड़ी छाला वज जांदी ते पंजाह हजार दे कट

महबूबे की मां तक यह कहा कि सन्माने निमाण निदाने निदान संत श्री गुरु संत की हजूरी देकर बड़ी अकीदे दिला में बैठी गुरु प्रसन्न जो आपकी सरकार के काबिल हो जो आपकी जिंदगी के इतने अहम करे मसलों के बीचों आपकी मुस्तफा कटिया जो आप जी ने सोच लिया कर आपको दरबार में जाना है एक गल नाल ही घट आज हो गई सब कुछ दूर पै गया आगे हो गई इतने पैसा जी ने आप बड़े सुंदर अंदाज कुछ संगीत दिया गलत कितिया हम सच समझो विद्वान लोग बैठे कंकन जी रणजीत सिंह साहब जी रसिया साहब जी कान जी मेरे जी अजिंदर सीतल सिंह जी बैठे हैं सच समझी जो संगीत है गाँव का यह गलत नहीं मजबूत बिल्कुल गलत नहीं ये कन्नड़ गल पै गई नहीं कदम इन्हें राजी हो गए इन्हें राजी नहीं सिर्फ बढ़ने ये गल का मजबूत न बढ़ता गल है आज गल है मेहनत जिन की सुपारत है जिरा मर्जी कर रहा है एक कर्म का कर्म है गल का कोई मजबूत नहीं जिन्हें करना है उन साधन की रोटी नहीं मिलनी पहली गल साढ़े तेरे अखर लग गया है ये तो आड़ है सच हिंदी पैसा भी कहा तो हाजी बता रहा बिल्कुल नहीं मिलता सी यह सिर्फ तंत्र जी गल तो पीछे है मैं दो गल कह के सच संगीत दुनिया के दो फान आठ हैं तीजा दुनिया के काम कोई दो बेड़े काम दोवा पेंटिंग पेंटिंग का वजूद बन गया गाने का कोई स्वरूप नहीं ना शब्द का स्वरूप है ना आ का स्वरूप है ना परमेश्वर एक अन्य जवाब है जब जो सू समझ आ गई कीर्तन की है तो फिर तो साधन की आवाज की लड़ नहीं झगड़े की लड़ नहीं झगड़े खत्म हो जाएंगे राज 25 मिनट टाइम है राज तकरीबन 20-22 मिनट अभी समाप्ति करेंगे शब्द की ठीक है आपे खुद चेला है आपे आपे हर सब चोर बनाई राग तकलीफ है यत्न करेंगे राज नहीं कह सकते तो एक बहुत महान बात है अच्छी आते हैं कि बिल्कुल प्रतीफ है आओ आपकी मदद है बात मैं पूछ रहे मैं कब चोर नतीश से वाहे वाहे

0: खालसा जी और सब तो पहला गुरु साहबा का बख्शा फतेह का जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दिया जालम सरकारां सिंघा सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होइआं सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुकम जारी कर दिता कि जेड़ा सिंह दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे पुखियां ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ति गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदिया होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंह नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे